0: ये तो चल नहीं रहा है।
1: ये क्या हुआ?
2: What happened?
0: अब क्या करेंगे? Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। I'm sorry. Excuse me.